0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओ बाणी जिस बाणी तो ऊपर कुछ भी नहीं पर अगां क्या अपनी साधना तो बिना ए गल जेन विच रखी हो के साधना नू तां भाग लगना जे ओदी कृपा होवेगी ता बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदय तिना समाणी जिस ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर दी नदर हो जाएगी उस दे हिरदे दे विच बाणी समाएगी। असी जपजी साहिब दा पाठ करने हां 38वीं जिहड़ी पौड़ी है उस विच जीवन घड़न दी जुगत दसी है क्योंकि सिर्फ एक बेनती कर रहे हां नदर प्रसाद कृपा बख्शिश इस तो बिना मंजिल नहीं। उस 38वीं पौड़ी विच सतगुरां ने सोना घड़न दी उदाहरण लई ते समझाया है जीवन घड़न बारे जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार भाओ खला अगन तप ताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल। इथे अगा फिर बख्शिश कीती ए उदाहरणा दे के जिवें सोना घड़िया जांदा इसे तरह दैवी गुणा नाल जीवन घड़िया जांदा पर अगे बख्शिश कीती घड़िए शब्द सची टकसाल पर ए सारे घड़ सकणगे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने फरमाया जिन को नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निखाल। बेनती है उस दी नदर नाल उदी कृपा नाल। इत्थे हजूर ने फरमाया पार ब्रह्म परमेश्वर एक है उन्हां नूं मिलाप दा पाण दा तरीका जेड़ा है ओ सत गुरां दी कृपा है।
2: सब जग जिन है ओ पाया पाई
1: सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी महाराज इस पवित्र अष्टपदी दी आरंभता करदे ने हे भाई आ जेड़ा संसार आपां देख रहे हां ए सारे दा सारा संसार दृष्ट अंदृष्ट खंड ब्रह्मांड ए पार ब्रह्म परमेश्वर ने आप ही पैदा की।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: कहो कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रसह सुपाई,
0: जब शिव शक्त कहो गितठाए,
1: जब आप अपनी जोत धरै,
0: जब कवन निडर कवन कत डरै,
1: अपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर अगम पार,
1: अवनासी सुख आपन आसन,
0: तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: अपन आप ही अचरजा,
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा,
1: जय निर्मल पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै,
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावै,
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करते का नहि सुमार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई,
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहाँ को चीन,
1: जब अपन आप पुरता है,
0: जय शगन आप शगन कहाँ विचार है,
1: जय आपन ऊच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जन हो,
1: जय छल अशेर अभेद समाया,
0: वहाँ किसे व्याप्त माया,
1: आप उसको आपे आदेश,
0: गुण का ना ही प्रवेश,
1: जय एक एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
1: जय आपन आप पतियारा,
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुँचा,
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: गुण मैं की नो विस्तार,
1: पाप पुन तह पई कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत,
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार,
1: सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान,
1: अपन खेल आप कर देख,
0: खेल संकोचे तो नानक एक है,
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसरे पसार संत प्रताप,
1: तुम पाप का आपे धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी,
1: आपे कौतुक करे अनब जोज,
0: आपे रस भोग निर्जोज,
1: जिस भावे तिस आपन नाय लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक,
1: दी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, राष्ट्रपति
1: आप कथा आप सुनने हार,
0: आप एक आप विस्तार,
1: जांत पावै तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाणे लय समाये,
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: अपन सूत सब जगत परोए,
1: जां को प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए,
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: ये यंत्र सब तां कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस राखै तिस कोई न मारे,
0: सो मुह आज समनो बिसारे,
1: इस तज अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय,
1: की जुक्त जां कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जानो साथ,
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार,
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर हो वित कृपाल,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: प्रत पालै जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसै ध्यात,
1: जिस भावै तिस लय मिलाए,
0: भगत करै हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया,
0: करन हार नानक एक जाने,
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न वृथी जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इससे ऊपर नहीं बीच चार,
0: जाकै मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोड़ भय निर्वैर,
0: हर दिन पूजा गुर के पैर,
1: हे लोक सुखी परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद,
0: उनका वो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरन का एह स्वाव,
1: आठ पैर प्रभे खो नेरा,
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: सुन उपदेश हृदय बसावो,
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत तो लेहो सवार,
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: मन बसै ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जपो लिबलाए,
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निध है खेप तुम्हारी,
1: एका टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए,
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर्भव जपै सकल भव मिटै,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै हंकार,
0: इस जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल,
0: ताका निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया,
0: साध संग नानक हर त्याया, श्लोक,
1: ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश,
0: हर कृपा ते संत भेटिया, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੇ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਤ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਮ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਪਣ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਣਾ ਨੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਸ਼ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਨੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ

जीत फिरै सब देश देसान को, बाजत ढोल मृदंग निगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणे नहीं जात बिचारे, श्रीपद श्री भगवान पदे बिन, अंत कौ अंत के तहम सिधारे, तीर्थ नान दयादम दान, सो संजम नेम अनेक बसेख, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जवान सबान के पेख, पावन आहार जति जत तार, सबै सो बचार हजार क देख, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रत्ती बिन एक न लेखै,

चल लेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अबिचार सार की तहर पशैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़न हार सो बातन ही चाक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच के अनेक सो एक दिवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जाग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र।

आया कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापाए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापाए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो।

माफी बख्शो, अगे वास्ते समत सोझी बख्शो। पढ़ी सुनी बाणी दरते प्रवान करनी जी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव पढ़न सुनन वालियां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, संगतां दियां हाजरियां भेटावां। आप जी के पावन दरबार गुरु के लंगरां विच तन मन धन करके कीतियां सेवावां दरते प्रवान करनियां। चलिया कदम कदम लेखे विच लाउणा, दरों करों समुचियां ही संगतां परिवारां बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात, नाम सेवा सिमरन चरणा कमलां दा प्रेम भरोसा, बाणी बाणी नाल प्यार, घर परिवारां विच सुख शांति, चढ़दी कला तंदरुस्ती, किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, अंग संग सहायक होना सतगुरु जी कृपा करो। अपने खालसे पंथ जी नूं सदा ही चढ़दियां कला परस्पर प्रेम प्यार एकता तफाक राज भा खालिस्तान दी दात बख्शिश करके पंथ कौम नूं निहाल निहाल करो जी। जेलां दे विच बंद बंदी सिंघां नूं देह रोगतावां चढ़दियां कला रहाइयां बख्शिश करनियां जी। सतगुरु जीओ आप जी के हजूर सेवक परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां हन जी। बेटा प्रभ जन सिंह दी चढ़दी कला अते महाराज आप जी ने कृपा रहमत कीती, तंदरुस्ती दी दात बख्शिश कीती है, सेवा विच हाजर कीता, महाराज आप जी दा कोटान कोट शुकर शुकराना है। चढ़दियां कलां बख्शिश करनी रहमत करनी सतगुरु जीओ। बेटा गुरफतेह सिंह दे जन्म दिन दे खुशी विच परिवार वल्लों शुकराने दी अरदास बेनती अते बच्चे नूं सुन अते बोलन दी दात वास्ते गुरसिखी नाम दान दी जाचना अरदास बेनती है जी। रमनदीप कौर महाराज सतगुरु जीओ आप जी दी कृपा दे नाल बख्शिश होई है, कार्ज संपूर्ण होए हन, वर्क परमिट दी प्राप्ति होई, शुकराने दी अरदास बेनती कृपा करनी महाराज। आउण वाले समय विच वी चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी जी। परमजीत कौर सतगुरु जीओ तंदरुस्ती चढ़दी कला ते बेअंत खुशियां दे दात बख्शिश करके निहाल करना। आप जी के भाने विच चार पहर रहन सुखां दी बतीत होई है, दिन आया है आप जी के भाने विच सुखां दा बतीत होवे। आप जी के हजूर संगतां वल्लों कड़ाह प्रसाद दी पावन देग सजा के हाजिर है, देग सजाउंदिआं बाणी पढ़दिआं होईआं भुल्लां दी माफी बख्शिश करो, अगे वास्ते चंगी मत बख्शिश करो। कारी पाक साल सोच पवित्रा हुण लावहु भोग हर राय। आप जी भोग लाओ, लग्या भोग सी प्रसाद संगत विच वरते जो जी सके। आप जी का अमृत नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सुभाए मान। मुखार बिंद हुक्मनामे साहब दी दात बख्शिश करके संगत नूं निहाल करतार्थ करो जी। मुख वाग उपर चलन दी बल बुद्धि समर्था बख्शो, सही प्यारियां दे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। नानक नाम

दंडावत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ दार मादे ठाडे दरबार तुझ बिन

0: परम सच्चा निशान पौड़ी।
1: सच्चा साहिब एक पूजन सचो सच वरताया, जिस तो देश मिले सच ताती ने सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देह दर्श ना।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साद संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-9607-90.
1: लाल गंडे 25 पाउंड दा बैग 17.98 दा अते पीले गंडे 50 पाउंड दा बैग लवो 18.98 दा बीसी लंबियां कौड़ियां मिर्चां 49 नू पाउंड बिना बीज वाला हदवाना 58 सेंस नू पाउंड अते 4 पाउंड धोती हुई उर्द दाल अते मूंग दाल लवो 4.99 दा बैग
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जा कॉल किरण @604-581-1900